0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे

और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 वे एरो इंजन के

0: आनके होला दिलिया पिसो बांगता जे मथालो जे कायके त दाग दोरा बोलु किले कु सोंसी नांके थोय बांगा पंचेन मा आ पोट नेगे चिंग होनाय निपिनान लगे दुता गली पोट चीरी दुहिला पमाला
1: चिहुंग दुहिला
0: चिहुंग दुहिला अमासीला सो ए आंमी सुदिंग सिनारी दुन बोन वांग बोम नारी दुन बोन वांग बोन दाग के पिनान भान जे थेग लोग ल लसी चिपुलो बाय नेगे नांग थियलो बुसी तिनलो स्तमी पिनिंग के अरना मरनी बन सीना पचे तोंग ठुलो पोट ने हेम नंग चे पोन पो मा हेम चे पोन दे
1: ओ
0: हमसे हो हेम ले रोक फी बांगा पुलो ला इतुम रोंग चे चो ला पेन दिल्ली के इतुम कोर्टे पोकलो एपो पायता सिवेलो सितामे नांग निफान नांग पाथी जी फान अफोंग अफोंग ला ने निप्राण कार मुजिया फान लान निफान लापुसन नांग पा शिक्षा पोट मो पेठे कंगटांग मो लोंगले कंगटांग ता इतुम के तेरांग रंग चेचो लपेन तेरंग दिल्ली के इतुम के हेम एरित इंगती मेन्थुआ अलंग पोंग पुनो तार पुनो इतु निराब लोंगले निराब नांगने इतुमला आनफु इफुवेत चुराब नांगने हान इफुवेत चुराब नांगने तोर के दामता इतुम दामराब नांगने पुसी लतुम सेमे कोरे चे चे एंदेल लसी नन पुआ कायंता तेरंग रंग चेचो लपेन तेरंग दिल्ली के चिउन ए
1: কিপুদাম মে পিকল ইন্ডিয়া খাই লাবংসা তো মোক থান লাপেন কে নন কার জুব আসাবে সে তামে আলি লং পুপুসি নিতা নিং থেল আপরলাম দো কক পুসি পিনি তোমো বারিম কে থানা যায় মেকে লাপালিং তো না মো আদুন্থু আং দেংলে পুথত তুমি যে তোরা চিংকিত তো না
0: কারণ
1: কুরবাংথু।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में

0: नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत

0: विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
2: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
3: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 8 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल

0: ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये बीजिंग जब डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
2: इन माई ओपिनियन विरिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विरिंगम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
0: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा

लाके आकाशवाणी दिफु नाली तुम चाहे मैं कर्जलों बम लाके एफ एम बैन लॉन्ग पेन मेगाहर्स फारो सिरा तक बोर सिर के प्लापेन के न्यूज ऑन एयर एप पेन ता चाहे मैं नाली तुम अर्जुलों इंजी आदुंतु कार्बी लिरमिया लुना चाहे मैं कंडेंग लॉन्ग संसोना लोन अर्जुक लोना तो तंते फ्रांसी पुखिला लेखते पी किलुन चेटोंग ओवे आही थी लोंग तो तंते लबांग सोलुन अपुठाक मसापसु चेथाना मिक्सना कांहोन के आ ओवे मते आर्टावे हा चोंपेन ले लेखा नंग टोक दुन लोते एते हांग पप्रायुन ई बांग वोटेक वोसु सारु माइनो निंके कांहोन चेचाप ई कांहोन पोहोरमु के पिर्थिया थाक ना होकता ना मथायावे अथे लके आनाम सोदाक लापेन आहोक कांहोन के पप्रायुन ई वीरुन ई लासी इतुमता ओवे हि थियलोंग चेलोंग रा कांहोन अलाम निंगा रोलाम चेथान सेना पुसी निंग के डॉग अबांग फुओ अपान लून पेन काचोपाचा दाम तो तंते लबांग सोलुन अर्जिक सेना

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा, अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचिए अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए एक पारंपरिक रचना, स्वर अली गनी का और संगीत भी अली गनी का ही है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल का गाया ये गीत।

0: ये आवाज थी जुबिन नौटियाल की। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गालिब का ये कलाम।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और आप सुन रहे थे गालिब का कलाम। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मधुशी का गाया ये पारंपरिक गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FS-1 का जलावतरण किया और

0: फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की लट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज विनोद खन्ना, जाने माने अभिनेता, जी हाँ, जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हम सभी जानते हैं कि उनकी पर्दे पर एक शख्सियत अलग पहचान रखने वाली थी, है ना? उनकी आवाज़, उनका व्यक्तित्व और अभिनय में एक खास ठहराव था और हर किरदार को वो यादगार बना देते थे। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उन्हीं को याद किया है उनकी फिल्मों के जरिए। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, गीतकार फारूख केसर, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी।

कार्यक्रम में आप सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

0: मेरी जान का दुश्मन हाय हाय
1: हाय हाय
0: कैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय
1: हाय
0: मेरी जान का दुश्मन हाय।

0: की उलझन तैयबली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय हाय।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए सुनते हैं लक्ष्मण प्यारेलाल का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और इंद्र सिंह की, फिल्म का नाम परवरिश।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम तुम और वो, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे। स्वर आशा भोसले और विनोद खन्ना, वर्मा मलिक के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

Foundation.

0: शाम।
1: और आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम है द बर्निंग ट्रेन।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गरम खून। इसे संगीत में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनजान का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम खून पसीना।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। गीतकार गुलशन बावरा हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। इसे इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल,
1: और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज याद किया मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना को, और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए आज फिर आपसे हमारी मुलाकात हो रही है ना। और दोस्तों, कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें नहीं होती, वो एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में चलिए उन्हीं खास मुलाकात की गलियों में, जहाँ पहली नजर, पहली बात और पहली मुलाकात एक खूबसूरत याद बन गई हमारी जिंदगी में, उसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इबारत आज क्या है आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत या यूं कहें टेक्स्ट पढ़ देते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में भी वो पहली मुलाकात किसी से भी हो सकती है, उसका जिक्र आप भी अगर करेंगे तो कार्यक्रम और भी अच्छा लगेगा और ये मुलाकात और रोचक हो जाएगी। हमारी आज की इबारत है, आपको अपनी पहली मुलाकात याद है? कभी वो पहले पहले प्यार की मुलाकात जैसी खूबसूरत रही होगी, कभी कुछ और, और कभी लगता है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, बस इसी ख्याल से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैसे सच कहें तो कई बार ये मुलाकात एक बहाना है, असली बात तो दिल की होती है। और किसी खास से मिलकर लगे तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, फिर दो बेचैन दिल मिल जाएं तो दो चैन चाहने वाले, दो चैन ना चाहने वालों की मुलाकात हो सकती है, और पता ही नहीं चलता कि कब छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई है। फिर लगता है जैसे मुलाकातों का मौसम आ गया, मगर कुछ मुलाकातें इतनी हसीन होती हैं कि कल की हसीन मुलाकात के लिए आज की रात की यादों में कट जाती है। और कभी कभी दिल डरता है कि कहीं जाने वाले से मुलाकात न होने पाए। तो बस आज के इस सफर में मुलाकात के इन्हीं रंगों से हम रूबरू होने वाले हैं। चलिए तो सुनते हैं कार्यक्रम में कुछ खास गीत, ऐसे गीत जहां मुलाकातों का जिक्र है और जिंदगी की कुछ खास मुलाकातें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं इन गीतों की तरह। किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारे श्रोता अपनी अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपनी टिप्पणियों के तरह से। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं मगर अपने पीछे भावनाओं की ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो वर्षों तक मन में ताजा रहती हैं। पहली मुलाकात की झिझक, आंखों में छिपी अनकही बातें, दिल की बढ़ती धड़कन और किसी अपने के साथ बिताए कुछ पल, इनमें एक पूरा संसार समाया होता है। कभी कोई मुलाकात प्यार की शुरुआत बन जाती है तो कभी किसी बिछड़े हुए शख्स से आखिरी मुलाकात जीवन भर की स्मृति। मुलाकातें जिंदगी की किताब के वे पन्ने हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात और बिछड़ना, फिर उसी मुलाकातों की याद में खो जाना, अगली मुलाकात तक प्रेमियों की तड़प आज के गीतों में है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहली मुलाकात, प्यार की मुलाकात, यादगार मुलाकात और बिछड़ने के डर तक, ये सभी बातें इस मुलाकात में शामिल हैं। कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं लेकिन उनकी यादें उम्र भर दिल में रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में अचानक कोई मिलता है और हमें पता भी नहीं चलता वो मुलाकात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब होती है ना, न कोई वादा न कोई रिश्ता, बस दो अजनबी होते हैं लेकिन जाने न जाने क्यों एक शख्स दिल को अपना सा लगता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुलाकात यानी दिलों का काव्यात्मक सफर, ये केवल सवाल जवाबों का सिलसिला नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बुना हुआ एक नाजुक रेशमी पुल है। एक उत्सुक मन दूसरे समृद्ध मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करता है, तब शब्द और अर्थों के पर्दे एक एक करके आसानी से खुल जाते हैं और कोई नहीं कह पाता कि आज की मुलाकात बस इतनी। वाह क्या बात है, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से आपने अपनी बात कही है। और आगे आपने कल के का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने कहा है कि रिश्तों की गहराई समय की मोहताज नहीं होती बल्कि भावनाओं की सच्चाई पर टिकी होती है। अक्सर सफर के दौरान किसी बस, ट्रेन या हवाई जहाज में पहली मुलाकात किसी ऐसी व्यक्ति से हो जाती है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते। वो कुछ घंटों का सफर होता है मगर बातें करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं और स्टेशन आते ही अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। शायद हम दोबारा कभी उनका चेहरा भी न देख पाए, न ही उनका नाम याद रख पाए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के दौरान मिली मुस्कान, उनकी कही कोई गहरी बात या उनका वो निस्वार्थ व्यवहार हमारे भीतर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत सुंदर। अगला गीत सुनने से पहले आपके लिए हम लाए हैं दो सवाल, बहुत प्यारे से और सीधे साधे से। आप अपनी जिंदगी को, अपनी यादों को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को जब खंगालेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आज तक आप नहीं भूले। सवाल एक बार फिर से कि आपकी जिंदगी की वो पहली मुलाकात कौन सी है जिसे आप आज तक नहीं भूले।

कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गहरी बात। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। सवाल एक बार फिर कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है। खंगालिए अपनी यादों को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को, अपनी स्मृति को, और याद कीजिए वो दिन जब आपको कोई ऐसा शख्स मिला, वो कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, है ना, कोई भी, या आपने किसी जगह पे जाकर प्रकृति से मुलाकात की हो, आपको लगा हो कि वाह क्या क्या सुंदर नज़ारा है। मुलाकात कहीं भी किसी से भी किसी भी रूप में हो सकती है। ये आप सोचिए कि आपकी वो पहली मुलाकात कौन सी थी जिसे पाकर आप धन्य हो गए, या आपको आज तक याद है उनके कड़वे अनुभव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन।

जी हाँ, तो पहली मुलाकात इतनी ही रोमांचक होती है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, उसका ही जिक्र आपको करना है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कितनी लंबी जुदाई, एक मुलाकात के लिए तरस रहे थे नैना, लेकिन जितनी लंबी जुदाई थी उतनी ही प्यार से सराबोर थी वो मुलाकात। अरे आपने इशारों इशारों में बात लिखी है, लिखते कुछ तो हमें पता चलता कि कौन सी थी वो मुलाकात। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गीतों को चुना गया है, मुलाकात जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए। वैसे तो मुलाकात कब, किससे और कहां, जीवन के किस मोड़ पर हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, परंतु कुछ मुलाकातें जीवन भर याद आती हैं। हाँ, तो बताइए ना, कौन सी ऐसी मुलाकात थी आपसे जो जीवन भर से आपको याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें भी कितनी अजीब होती है, वैमनस्यता के सारे जख्म एक पल में सी देती है, न कोई शिकायत बचती है न कोई गिला, बस निगाहें झुकती हैं और दिल सब कह देता है। मुलाकातें भले ही चंद लम्हों की, ऊपर उनकी खुशबू उम्र भर यादों के गुलदस्ते में महकती रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातें ही मोहब्बत की मंजिल मुकम्मल करती हैं, ये वो मंजर है जहां मिलकर महबूब और महबूबा एक दूसरे की मुखातिब होकर मानसिक मनोमालिन्य दूर कर मिलन के मधुर मर्म का संज्ञान लेते हैं। आपसी भेद और मनमुटाव दूर करने में मुलाकातें ही महत्वपूर्ण माध्यम है, वरना मोहब्बत के मारों को इस मोहब्बत में मृत तृष्णा भांति अतृप्तता ही महसूस होती है। और आगे आपने हमारी तारीफ में भी लिखा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सफर तो क्या, विविध भारती ने जिंदगी ही सुरीली कर दी है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने 36 साल पहले का वो दिन याद करा दिया, जब मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से पहली बार मिली थी, यानी मेरे पति देव मुझसे मिलने आए थे, साथ में उनकी दीदी भी थी और हम पूरा दिन साथ साथ रहे, शॉपिंग की और फिर 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। ये मुलाकात एक बहाना है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला गाना यही आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुलाकात याद नहीं बनती, मगर कुछ मुलाकातें दिल में ऐसी उतर जाती हैं कि वक्त बीत जाता है पर उनकी याद कभी नहीं जाती। वहीं एक श्रोता का कहना है कि क्या जिस दिन हम विविध भारती से मिले उसे भी प्यारी मुलाकात कहा जा सकता है, पर हमें उस मुलाकात की न तो तारीख याद है न ही दिन, बस इतना याद है जब पापा विविध भारती चलाते थे तब हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था इसके अंदर कैसे रहते हैं लोग, कहां से आवाज आ रही है। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि हम दीवाने हो गए इस विविध भारती के, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही हाल हर बच्चे का होता है जब वो पहली बार रेडियो सुनता था कि भाई इसके भीतर कौन है, कहां बैठते हैं लोग, ये हर बच्चे के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की सालगिरह पर लाइव, अच्छा, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपकी बातों की तरह ही आप चुलबुली और प्यारी दिखती हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि ये भी एक तरह से आपसे मुलाकात ही हो गई, रूबरू न सही पर हुई तो। हाँ बिल्कुल होती है आपकी और हमारी मुलाकात तो। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबादत मुलाकात पर आधारित है और आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। जी हाँ, देखिए हो भी गई। एक श्रोता ने कहा है कि बस कुछ टाइम से ही मैं कमेंट करने लगी हूं और मैंने इस कार्यक्रम में अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है। चलिए, आपने शुरू कर दी है तो इस शुरुआत को अंत तक रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है, जब आप किसी से दिल से मिलना चाहते हैं और वो मुलाकात नहीं हो पाती तो ये अधूरी चाहत आत्मा को बहुत गहरी बेचैनी और तकलीफ दे जाती है। इसे ही शायद लोग इंतजार का दर्द या अधूरी मुलाकात की कसर कहते हैं। जब मन भावनाएं गहरी हो तो ये दूरी और भी ज्यादा भारी महसूस होती है और ये सिर्फ दो प्रेमियों की मुलाकात नहीं होती, ये किसी से भी हो सकती है, दोस्त परिवार रिश्तेदार। तो समय रहते मुलाकात करके गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अफसोस ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म का, लता मंगेशकर।

आवाज में नक्श लायलपुरी की रचना और खय्याम साहब की धुन। आप भी अपनी जिंदगी की वो मुलाकात बताइए जिसे आपको लगा ये मुलाकात तो बहाना था, असल में तो हमें मिलना था।

आप आज भी भूले नहीं। और हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कभी किसी से पहली मुलाकात में ही लगा कि अरे ये इंसान तो मेरे लिए बहुत खास है। तो हमारी श्रोता लिखती है कि चेहरे की रौनक छीनने वाले से कभी मुलाकात न हो तो बेहतर है, ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हम किसी से मिलते हैं और सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करता, आपको ठेस पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो ऐसी मुलाकात कोई भी नहीं करना चाहता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी अनजाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ यादों में बस जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। कभी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होती है तो ये दिल में बस जाती है और मिलने की चाहत बढ़ जाती है और हम सफर भी बन जाती है, आज उनसे पहली मुलाकात, ये जो गाने हैं इन्हें पसंद हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कोई मुलाकात कितनी अजीब होती है, न कोई तैयारी, न कोई उम्मीद, न ये आभास की सामने आया या अजनबी कभी इतना अपना हो जाएगा, बस कुछ पल में कुछ अनकही बातें आंखों के बीच ठहर गया, एक अनजान सा संवाद, कुछ रिश्तों की नियति साफ चलना नहीं, याद बनकर उम्र भर साथ रहना होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग जिंदगी में बड़ी देर से मिलते हैं मगर उनसे मुलाकात दिल में ठहर जाती है, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में उनकी जगह हमेशा से खाली थी। जिंदगी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, न मुलाकातें, कभी कभी किसी विशेष से मुलाकात उस ईश्वर की मौन कृपा की तरह है जो ये एहसास दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप किसी के लिए पूरी दुनिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपकी अंतिम पंक्ति ने दिल जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंदीदा प्रस्तुतकर्ता हैं आप। अच्छा, आज मैंने पहली बार कमेंट किया है, प्लीज आप पढ़िए, प्रोग्राम में रोज सुनती हूँ। देखिए हमने कर दिया, आपने कुछ लिखा नहीं, आप लिखती तो हम उसे भी पढ़ देते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली मुलाकात हमारी हुई थी जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया, दोनों घरों के बड़ों के द्वारा हमें पसंद करने के बाद मेरी होने वाली धर्मपत्नी और मुझे अजमेर के रेस्टोरेंट में पहली मुलाकात कराई गई। वो जो नजरें झुकाए बैठी थी और मैंने मन में माता रानी का शुक्रिया अदा करते हुए मन में ठान लिया था कि बस यही है मेरे सपनों की रानी, बाद में अकेले में खूब बातें भी करी थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूली जीवन में ट्यूशन पढ़ने के दौरान मेरी गलतियों पर मास्टर जी के डांटने पर उसकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, फिर नजरें झुका लेना, उफ, पहली मुलाकात ऐसे ही मुस्कुराने पर कई महीनों तक चली, कुछ हुआ तो नहीं मगर वो मुस्कान बनी मुलाकात अभी भी दिल को कोरेद देती है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए हैं जनाब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइड। अरे तो लिखते हैं, अगर आपको पहली एक तरफा प्यार हुआ था तो बताते कैसे हुआ, क्या हुआ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार नहीं होता, विश्वास होता है, बाद में प्यार होता है। ये अपने अपने अनुभव होते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सफर की हर मुलाकात यादगार बन जाती है और आपका साथ भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर गीत के साथ छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हमारी मुलाकात सुरीला सफर से हो जाती है तब किसी अन्य की मुलाकात की जरूरत होती ही नहीं है। जब आप किसी कमेंट्स को पढ़ने के बाद कहती हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, बस मजा आ जाता है, बस आपका ही सिलसिला बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अरे आप लोग इतनी शानदार समीक्षाएं भेजते हैं, टिप्पणियां भेजते हैं, तो वो निकल जाता है मुंह से कि वह क्या बात है, दाद देनी पड़ती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, याद है मुझे आज तक। अरे बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकात जीवन में ऐसी होती हैं जो भूल कर भी याद रहती हैं, कभी कभी ख्यालों में वो मुलाकात यूं ही याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें वक्त के दायरे से परे होती हैं, वो घड़ियों के सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि उस शिद्दत से नापी जाती हैं जिसे दो रूहें एक दूसरे को छू लेती हैं। वक्त का पहिया भले ही आगे निकल जाए पर दिल के किसी कोने में वो एक पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उन्हीं पलों की खामोशी में एक ऐसी आवाज होती है जो भीड़ में भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देती और जिंदगी के लंबे सफर को एक मीठी महक से भर देती है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत गहरी बात आप लोगों ने लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी मुलाकात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बहुत पुरानी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहब्बत जिंदगी है। सुना है इस फिल्म का नाम आपने, बताइएगा अगर सुना है तो। और इस फिल्म में कौन कौन थी ये भी बताइएगा। SH बिहारी के बोल हैं और OP नैयर की धुन।

तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर विचार लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, हाँ लिखा है कि नमस्कार, मुलाकात अजनबी से हो, पहचान वाले से, छोटी हो या बड़ी, समाज में चलता रहता है कुछ मुलाकातें तो सीने में याद बन जाती है। किसी से मुलाकात में डर भी लगता है और कोई मुलाकात प्यार में बदल जाती है और कई मुलाकातों से आपसी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात फेस टू फेस नहीं बल्कि ऑनलाइन एक दोस्त से हुई और पहली बार ही एक विशेष प्लेटफॉर्म पर पता चला। पता नहीं क्यों उनके नाम के आगे रुकी और कुछ दिनों पश्चात ही उनका मैसेज आया और हमारी बात हुई। ऐसा लगा जाने कब से एक दूसरे को जानते हो पर आज तक कभी मिले नहीं हम। एक रिश्ता रूहानी था जहां देखने की कभी चाहत ही नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात लिख दी आपने। और आपके इस बेबाकी को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने अपनी बात, अपना दिल हमारे सामने रखा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो कहूंगी कि आदमी किसी से भी मिले तो कभी नहीं बिछड़े। मैं दो शख्स को हर दिन तलाशती हूं। पहली मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी, नाम था उषा शाह। इन दिनों नहीं मिल रही हैं और मैं वो असम में थी और मैं भागलपुर में। दूसरों में जब मैं दिल्ली में थी तो वो मिली, सिर्फ ये पता कि वो उत्तर प्रदेश में थी। उनके लिए भी मेरे मन में बहुत बेचैनी होती है। आपने अपनी बात को थोड़ा सा सिलसिलेवार नहीं लिखा इसलिए हमें पढ़ने में दिक्कत आई है। कुल मिलाकर

ये पता चला कि आपकी दोस्त आपसे बिछड़ गई है, जिसको आप ढूंढ रही हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी 3 अक्टूबर को इलारुण जी से आपकी मुलाकात हुई। इससे पहले इलारुण जी ने इस मुलाकात में मोरनी बागा नाचे पर सभी महिला उद्घोषकों को नृत्य करवा दिया, जिसमें आपका नृत्य भी देखने लायक था। ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। ऐसे ही कई मुलाकातें हैं मेरे साथ भी हुई। उन दिनों मेरी पोस्टिंग संसदीय ग्रंथालय में थी, वहीं पर लोकसभा टेलीविजन के स्टूडियो में भी थे, जो अब भी है। चमड़े से बनी सफेद चप्पल पहने, सफेद पतली कटारीदार मूछे, सिर पर सारे सफेद बाल, सफेद रंग का ही कुर्ता पजामा पहने एक लंबी कदकाठी के व्यक्ति चले आ रहे थे। उनसे एक मुलाकात, नाम से इंटरव्यू होना था। इस पूरे इंटरव्यू को मैंने स्टूडियो में बैठकर देखा। इंटरव्यू के बाद मैंने उनके पैर छुए और जलपान के बाद उन्हें छोड़ने गेट तक आए। वो सफेद कुर्ता पजामा पहने शख्स थे, गीतकार गुलजार साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज मुलाकात पर सुरीला सफर चलेगा, ये वाकया याद आ गया। देखिए, आपने अपने दिल को खंगाला ना। गाने तो आपने सारे गद्यांश में लिख ही दिए थे, इन मुलाकातों के बीच एक गीत भूल के जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है, पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने दिल खुश है, आज उनसे मुलाकात हो गई। बहुत सारे कहते हैं मुलाकातों पर, है ना। और वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अपने शहर में घूमते समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से अचानक मुलाकात हुई और पहली बार ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हुआ, पर पतिदेव ने कहा कि ये वही है जो हम सोच रहे हैं। फिर हमने उनके पास जाकर हाय हेलो किया और ये मुलाकात यादगार बन गई। बहुत सुंदर, आपने हमारे सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज जाते समय अक्सर मिल जाते थे, कॉलेज जाना क्या छूटा, मुलाकात होना ही बंद हो गया। अरे क्या बात है, ऐसी बात, चलिए क्या कहूं मैं आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ देर से पहुंचे हैं आपके कार्यक्रम में, लेकिन आखिर मुलाकात हो ही गई है। विविध भारती से इतना प्यार जो है, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर से 12 किलोमीटर दूर गांव जामनिया खुर्द से कन्हैयालाल और कई लोग मिलकर आपकी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा ही हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि जवाबी संदेश दिया आपने, यानी हमारे सवाल का जवाब दिया है कि टीचर की पोस्ट देनी थी, मुलाकात कहनी थी, कम शब्दों में दिल जीतने वाली बात, अनपेक्षित सवालों का आघात बन गई थी बुरी हालात, फिर भी न जाने कैसे मिल गई थी नौकरी की सौगात। बहुत सुंदर। और एक श्रोता कहते हैं कि उस जमाने में तो सब कुछ अरेंज करके ही किया जाता था, इसलिए पहली मुलाकात भी प्री प्लान ही थी। फिर दूसरी मुलाकात के बाद तो शादी हो गई, पर उसके बाद की मुलाकात जो ही उसने अरेंज मैरिज वाले भाव को ही बदल दिया और रिश्ता जान पहचान से बढ़कर पक्का हो गया और उस मुलाकात के दम पर हमारे प्यारे रिश्तों की नींव पड़ी है और ये मुलाकात हमेशा के लिए यादगार बन गई है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कि जब आप पहली बार मिली होंगी और उसके बाद जब आपका ब्याह उसी शख्स से हो गया तो अब जिंदगी तो बस क्या बन गई, बहुत शानदार, है ना। आइए सुनते हैं फिल्म पालकी का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद साहब की धुन। कभी ख्वाबों में आपकी भी मुलाकात किसी से होती है, बताइएगा।

तो कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपकी भी कभी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो, ख्वाबों में, सपनों में और अचानक, है ना? तो बताइएगा कम शब्दों में, बहुत कम समय हमारे पास है और श्रोता बराबर जवाब दे रहे हैं हमारे सवालों का। एक श्रोता लिखते हैं कि फेसबुक विविध भारती से जुड़कर बहुत सारी ऐसी सहेलियां मिल गई, पता नहीं इनसे मुलाकात कब होगी, पर ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। हम फोन पर हमेशा दिल खोल कर बात करते हैं, तब नहीं लगता कि मुलाकात कोई जरूरी है। क्या बात है, आप फेसबुक से जुड़ गई हैं और एक परिवार बना लिया है आप सभी लोगों ने, तो जाहिर है सभी सखियां आपस में बात करती हैं, है ना? क्या बात करती हैं आप लोग बताइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी पिछले महीने यूनुस जी, अच्छा यूनुस खान जी इंदौर आए हुए थे और मैं पास में ही रहता हूं, पर यूनुस खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा अफसोस हुआ। अरे कोई बात नहीं, वो जब दोबारा आएंगे तो पता करिएगा कि वो कब आएंगे।

कैसे आएंगे और आपको कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी उनसे और आपका ये संदेश हम पहुंचा भी देंगे उन तक। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र जी, और जो आपने पूछा था मोहब्बत जिंदगी है, ये फिल्म एक श्रोता ने देखी है और कहते हैं कि इसमें धर्मेंद्र और राजश्री थे। अच्छा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, वो मुझे देखने आए और बस बात गई बन गई और शादी हो गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़की वालों ने मुझे देखने के लिए घर बुलवाया, लड़की के बड़े भाई ने कई प्रश्न किए, सभी के सही जवाब दिए। बाहर छोड़ने आए तब बड़े भाई ने कहा और कोई सेवा, तो मैंने जवाब दिया कि मेहरबानी बनाए रखें, तो बड़े भाई ने कह दिया कि अभी तो आगे सोच कर करेंगे। हम दोनों कंफ्यूज थे, शर्म भी आ रही थी, आगे चलकर एक मुलाकात रिश्ते में बदल गई है और जल्दी ही शादी भी हो गई है। क्या बात है, बधाई हो। एक श्रोता लिखते हैं कि यादगार मुलाकात तो हमारे शहर अजमेर में एक कार्यक्रम में महान संगीतकार आदरणीय आनंद जी आए हुए थे। क्या बात है, कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी। कार्यक्रम के बाद मैं उनसे मिला और मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, अरे आप सिंधी हैं? अरे भाई मैं भी सिंधी हूँ, कच्छ का रहने वाला हूँ, और वो मुझसे सिंधी में ही बात करने लगे जैसे मुझे बरसों से जानते हो। ऐसे उनका मेरे लिए अपनत्व से बात करना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी मुलाकात आनंद जी से हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिमला में एक पंजाबी फैमिली से मुलाकात हुई 2016 में, वो अच्छा बीकानेर से थे, उनके कई साल तक बात होती रही लेकिन एक दिन पता चला कि वो शांत हो गई और वो मुलाकात यादगार बन गई। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती मुझे बहुत पसंद है और 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से जुड़ने की, कॉल करने की, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन करते रहिए, ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग पता है बरसों बरसों से फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे पतिदेव से जब पहली मुलाकात हुई तो वो बताते हैं, पर एक वादा करिए, हंसेंगी नहीं आप? अच्छा, नहीं हंसेंगे पर हमें आप लोगों के संदेश पढ़कर हंसी आ जाती है क्योंकि उसमें प्यार और अपनत्व और मिठास छुपी होती है, तो मैं हंसे बिना नहीं रह पाती। चलिए नहीं हंसूंगी, पढ़ तो दूं। आपने लिखा है कि कोई न आपके साथ सभी श्रोता भी हंसेंगे। अरे श्रोताओं मत हंसिएगा, है ना। वो लिखती है कि हम उनसे मिले जब हमने उन्हें वरमाला डाली क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें देखा ही नहीं था, इतने हम डरे हुए थे, नहीं बात की थी कभी, आज सोचते हैं तो हंसी आ जाती है। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कैसा था पहले, हम तो ऐसा कभी नहीं करें। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आप खुद ही हंस पड़ी हैं और आप हमें हंसने के लिए मना कर रही हैं। बिल्कुल वो समय ऐसा था जब शादी होती थी माता पिता की बातों से, माता पिता की सहमति से, और लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, लेकिन वो डर, वो भय वो होता था दोनों तरफ, लेकिन लड़कियों में खास तौर से ज्यादा होता था। लेकिन आपके बच्चों ने सही कहा कि आज समय बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, मुलाकात करने के तरीके बदल गए हैं और बहुत जिंदगी का फलसफा भी बदल गया है। तो मुलाकात करते हुए हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म है लेडीज टेलर। इसके बारे में भी बताइएगा, आपने इस फिल्म को देखा था या इस फिल्म के गाने आपको पसंद है, कौन कौन से गीत हैं। फिलहाल सुनिए ये गीत।

0: जी हाँ, दो चाहने वालों की मुलाकात कैसी होती है, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अभी दिल खोलकर आपने लिखा नहीं है। चलिए फिर कभी किसी कार्यक्रम में दिल खोलिएगा और बताइएगा कि कभी किसी की मुलाकात क्या रंग लाई आपके जीवन में, चाहे वो मुलाकात सामने हुई हो, ख्वाबों में हुई हो, कहीं भी हुई हो, है ना। अब अगले किसी कार्यक्रम में आप दिल खोलकर अपनी बात रखेंगे। वैसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कई गाने जैसे आप ही गा रही हैं। अच्छा, मुलाकात तो हमारी अपने होने वाली धर्मपत्नी से हुई थी, वो बहुत शानदार थी, जो हमें हमेशा याद रखती है, रहती है, बहुत सुंदर, रहनी भी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एक बार बैंकॉक से पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, नागपुर के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मुझे पुराने महाभारत के श्रीकृष्ण यानी कि नितेश भारद्वाज अपने सामने बैठे दिखे। मैंने अपने पति के कान में धीरे से कहा और बाद में हम दोनों ने उनसे मिलकर फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर, वो पल आपको बहुत याद होगा, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती से तो मुलाकात सबसे जब से होश संभाला है तब से हो गई थी, आज भी हो रही है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर सपनों में मुलाकात की बात आप करते हैं तो हमें सपने तो बहुत आते हैं और कई दिन तक कई नए नए चेहरों से मुलाकात तो होती है, लेकिन सुबह उठकर फिर भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रहता, लेकिन नए नए चेहरे सपने में अगर आते ही रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि युवाओं को बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, तो ये बात सच है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबादत पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को हम विविध भारती के पेज पर देखते हैं, लेकिन एक तमन्ना है कि आप सभी से रूबरू मिलने की उम्मीद है और मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। क्या बात है। तो चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक अब आ गए हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम चरस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
0: हमें गुड नाइट नहीं कहना है अभी, तो हम रात को कहेंगे, अभी तो गुड डे चल रहा है।

तो दोस्तों, इस कार्यक्रम से अब हम भी जुदा होते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए कार्यक्रम में और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और

0: आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट

0: सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलें और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों

0: खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: यह अवस्थी आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था चौदवी का चांद। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीत दिया था रवि ने।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में अभी आपने अनजान का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था जाली नोट।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे

0: के चंदन को कितना जानते हैं। संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला बाजार का गीत, शब्दकार शैलेंद्र और संगीत ओ एस डी बर्मन का।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला।

0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल। फिल्म का नाम है सरहद और आवाजें आशा भोंसले और सी रामचंद्र यानी चितलकर की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुख खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, आवाज गीता दत्त की। इस गीत को शकील नोमानी ने लिखा है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम।

0: 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। पंडित भरत व्यास की बोल, एसएन त्रिपाठी की धुन, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजें। फिल्म का नाम है लाल किला।

0: नजर और एक तरफ है पतली कमर, बाजी बराबर लगी हुई ना इधर कसर ना उधर कसर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सखियों को और आरती आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज बहुत विषय हैं जिन पर हमारे जो फेसबुक से जुड़े श्रोता हैं उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन फिर भी हम विषय बताते हैं कि
2: जिससे कि जिससे कि हम हमारे जो श्रोता उनको एक बार हम अपने मुंह से बता सके।
1: भाई हर श्रोता नहीं जो फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, कई लोग सिर्फ रेडियो सुनने के लिए अपने आनंद के लिए भी सुनते हैं।
2: हाँ, ये तो है।
1: तो भले वो हमें संदेश ना करें लेकिन उनके लिए भी क्या विषय है ये जानना जरूरी है। तो आज है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, इसके बारे में बात होगी।
2: और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं संगीता देवी जी जो कि हैं संस्थापक दिया माटी की, और साथ ही हम लेकर आए हैं मुहावरों की दुनिया।
1: तो कौन सा मुहावरा है भाई, आज किस मुहावरे पर हम बातचीत करें?
2: आज हम मुहावरे पर बात करने वाले हैं कि अक्सर जो हम लोग करते हैं ना काम, कि अब भाई हम करेंगे करेंगे करके ओखली में सर दे ही देते हैं कि चलो कर ही देते हैं, अब क्या है। तो अच्छा, ओखली में सिर देना,
1: ओखली में सिर देना हुआ एक मुहावरा, इसी को दूसरे मुहावरे के साथ भी जोड़ते हैं ना।
2: हाँ,
1: ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डर?
2: बिल्कुल, अब आपने उसमें दाल ही दिया है ना, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा अब।
1: जी, और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी, और ये हल्की फुल्की बातें भले है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि अब जो समय है त्योहारों का समय आ गया भाई, आ चला। और त्योहार आने का मतलब क्या?
2: त्योहार के नाम से ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि त्योहार मतलब बढ़िया खुशियां, एकदम चकाचौंध हर तरफ।
1: वो जो खुशियां और चकाचौंध है ये आती है थोड़ी सी साफ सफाई सजावट घर की होती है,
2: काम करना पड़ता है।
1: त्योहार मतलब सजावट भी है, थोड़ी साफ सफाई भी है, थोड़ा सा घर में काम भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाएंगे ना सबके लिए, खाने के लिए, मेहमानों के लिए भी और घर के सदस्यों के लिए भी, तो वो भी एक काम होता है। और इन चीजों के लिए भाई खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, वरना सजावट का सामान कैसे आएगा, घर में पकवान बनाने का सामान कैसे आएगा, तो खरीदारी भी
2: एक समझिए एक हमें आनंद का विषय है। खरीदारी करने जाना मतलब सच्ची में खरीदारी करने जाना है, मतलब सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि अब जाएंगे जो मन करेगा देखेंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो देखेंगे वो हम अपने बजट के हिसाब से खरीदेंगे।
1: जो त्योहारों का समय होता है ना, इसी उत्सुकता और उत्साह की वजह से जो विक्रेता हैं वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं लोगों को और लुभाने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ खरीदारी के लिए और आकर्षित।
2: बहुत सारी चीजें होती हैं और तरह तरह के ऑफर तो होते हैं, साथ में कई सारे और जो इस तरीके के विक्रेता होते हैं ना, तो कुछ जो लुभावने होते हैं इसमें वो ठगी का भी वो कर लेते चीजें, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
1: ठगना भी नहीं है, अपना बजट भी नहीं बिगाड़ना है।
2: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम को संभालना है तो भाई गाने
2: गीत तो सुनना पड़ेगा
1: जी।

0: आरती बहुत खूबसूरत गीत था और उसके जो शब्द थे ना कि तन मन की सुध बुध गवा बैठी, कोई चीज जब दिल में समाती है, हमारे मन में बस जाती है ना, तो वो इतनी भाती है कि हमें सुध बुध नहीं रहती। और इसी तरह से जब हम किसी काम को बहुत डूब कर करते हैं तो उसकी सुध बुध नहीं रहती और ऐसा काम हमें सफलता भी देता है।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हम एक महिला को लेकर आए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है संगीता देवी, जो कि संस्थापक हैं दिया माटी की। तो संगीता देवी की कहानी बिहार की सीतामढ़ी जिले के परिहार से जुड़ी हुई है। ग्रामीण महिलाओं की खेती और पशुपालन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं ने उन्हें ऐसा सामूहिक मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया जिसमें महिलाएं केवल किसान या लाभार्थी बनकर न रहकर कंपनी की शेयर धारक और निर्णय लेने वाली सदस्य बने।
0: तो उन्होंने जो निर्णय लिया ना आरती, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जोड़ना जो ज्यादा तकनीक के बारे में नहीं जानती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो खेती से जुड़ी है, पशुपालन से जुड़ी है, तो उन्हीं के काम को लेकर उन्हें आगे बढ़ाना। और संगीता देवी की कहानी जो आज हम बता रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये केवल एक कंपनी की स्थापना की बात नहीं है, ये उस सोच की कहानी है या उस सोच की बात है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को मदद पाने वाली महिलाओं से निर्णय लेने वाली उद्यमी महिलाओं को बदलने का प्रयास किया गया। यानी कि वो महिलाएं जो अब तक सिर्फ दूसरों से मदद मांग रही थी,
1: सही बात है,
0: वो उठकर इतनी सशक्त बनी कि वो उद्यमी बनी और दूसरों की मदद करने के काबिल भी बन सकी। और इस कंपनी की नींव गांव की महिलाओं ने, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें होती है ना, बस वहीं से पड़ गई।
1: बिल्कुल, इससे ये भी हमें पता चलता है ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो या हम बहुत सारी पूंजी इकट्ठा करने के बाद कोई काम शुरू करें। अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास कोई हुनर है, तो हम छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि किसान बीज, खाद और पशुपालन से जुड़ी हर छोटी जरूरत के लिए बाजार और बिचौलियों पर निर्भर है, तब लगा कि अगर महिलाएं मिलकर अपनी कंपनी बनाएं और खुद फैसले लें तो वो सिर्फ अपनी आय ही नहीं बढ़ा पाएंगी बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकेंगी।
0: आरती, और आरती देवी की यात्रा हमें बस यही तो बताती है कि गांव की जो महिलाएं हैं उसके पास संसाधन बहुत सीमित हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी सामूहिक सोच है, यानी कि सब मिलकर जब वो किसी बात पर विचार करती हैं, सोच करती हैं, उसे अंजाम देती हैं, या प्रशिक्षण उनके पास जो है, जो बाजार की जो समझ है और नेतृत्व का अवसर अगर उनको मिल जाए, तो ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली एक उद्यमी महिला भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल, और इस कंपनी की कहानी में असली माटी जो है, अगर कहा जाए दिया माटी माटी क्या है, तो माटी जो है वो गांव की है और उसकी असली दिया है वो महिलाएं जो मिलकर अपने भविष्य को रोशन करने की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई 2023 को दिया माटी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई और शुरुआत 10 ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनसे हुई थी।
0: और हर पंचायत से 3 महिलाओं को इसके लिए प्रमोटर बनाया गया और इस तरह से करीब 30 महिलाओं ने इस कंपनी की नींव रखी। और कहें कि शुरुआत करना इस चीज के लिए बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने ना पहले कभी कोई कंपनी बनाई थी, शेयर्स क्या होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये शब्द उन्होंने ना सुने थे ना ऐसा कोई काम किया था। तो इस टीम ने गाँव गाँव बैठकों का आयोजन किया और महिलाओं को ये समझाया कि वो किसी भी सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना जहाँ इन्होंने ये सब नए नए शब्द थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सिवा या गांव की खेती के सिवा कुछ नहीं देखा था, कुछ समझा नहीं था, वहाँ उनको इतना सशक्त बना देना, इतना ऊपर तक ले आना बहुत बड़ी बात है। और उन्हें वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, रिकॉर्ड प्रबंधन और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। और सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं का भरोसा जीतना था। कंपनी और शेयर जैसे विषय उनके लिए बिल्कुल नए थे, तो उनको समझाया गया कि उनकी अपनी कंपनी है।
0: और आरती, जब उन्होंने देखा कि हर फैसला बहुत पारदर्शी तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि उनसे छुपाकर कोई भी चीज नहीं की जा रही है और उनकी राय को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कंपनी की तरफ जो उनका जुड़ाव था वो भी बहुत मजबूत हुआ। और उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल खेती करना नहीं था बल्कि किसानों की सामूहिक बाजार

0: शक्ति है उसको बढ़ाना था।
1: बिल्कुल, और कंपनी के माध्यम से महिलाओं को बीज, खाद और खेती से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी उपज को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, और साथ ही बकरी पालन भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यानी कि आप समझ लीजिए, जो भी कुछ गांव में होता है सभी चीजों को बाजार का एक प्रोडक्ट की तरह से उन्होंने प्रयोग किया। और स्थानीय महिलाओं के लिए बकरी पालन आय का प्रमुख साधन था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण होता है पशु आहार होता है और बाजार तक पहुंच, ये कुछ समस्याएं थी।
0: बिल्कुल, अगर आप किसी भी तरह का कोई पशु पालन कर रहे हैं तो अपने पशु को भी स्वस्थ रखने के लिए जो उसका आहार है उस पर खास ध्यान देना होता है। और इसी संदर्भ में उनकी कंपनी ने दमदार दाना इस नाम से एक पशु आहार विकसित किया। इसके बाद संगीता देवी के मन में विचार आया कि भाई जब कपड़े और दूसरी आवश्यक जरूरतें ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं तो क्यों ना ये जो पशु आहार है, बकरी का आहार है, इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है। और इसी सोच के साथ जो उन्होंने जो दमदार दाना जो लॉन्च किया था उसको सही दिशा में पहुंचाने का काम शुरू हो गया।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना देखिए हर चीज आज जो एक क्लिक के ऊपर में मिलती है, तो इस तरह से अगर हम कोई भी चीज करना चाहें तो हम अपने घर से भी इसमें ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण महिला उद्यमिता और डिजिटल बाजार के बीच एक दिलचस्प उदाहरण है। इस मॉडल का एक बड़ा बदलाव ये है कि महिलाएं बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और व्यवसाय संबंधी निर्णयों में अधिक सक्रिय हुई। कुछ महिलाएं ग्राम सभा जैसे स्थानीय मंचों पर भी अपनी बात रखने लगी।
0: और कंपनी भविष्य में पशु सप्लीमेंट्स, हरा चारा, जैविक उर्वरक, कृषि इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण, इन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करना चाहती है और दमदार दाना को बिहार के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो इस तरह से हमें कहीं भी रुकना नहीं होता है, हम ये कभी ना सोचे कि हम में ये कमी है या हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए
1: अभी समय हो गया एक छोटे से
0: अंतराल का।
1: हाँ।

0: तो ये गाना सुना और इस गाने को सुनने के बाद ना मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खनक थी इस गीत में और मुझे भी बहुत पसंद है।
1: है
0: और
1: भी अच्छा।
0: अब बात करते हैं एक मुहावरे की, जो है ओखली में सिर देना। नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, इंसान मुसीबत में फंसता नहीं बल्कि मुसीबत को देखकर खुद ही कहता है कि आइए आपका स्वागत।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे मौकों के लिए ही हिंदी में बड़ी मजेदार कहावतें मुहावरे हैं, जैसे एक तो है भाई आ बैल मुझे मारो, और एक है ओखली में सिर देना, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी परेशानी में जानबूझकर पड़ना और फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। और जब ओखली में सिर देंगे तो मूसल तो पड़ेंगे ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, पड़ोसी ने कहा भाई साहब मेरी शादी की तैयारियों में बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपने कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। तो और 5 मिनट बाद आप फूल सजा रहे हैं, कहीं पर आप कुर्सियां लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद आप मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, और शाम होते होते दूल्हे की सेहराबंदी भी आपके जिम्मे। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भैया जरा उससे डीजे वाले से कह दो कि जरा और दूसरा गाना लगा दे। तो मतलब एक से लेके पूरा 10 तक सारे काम आपके जिम्मे।
0: बिल्कुल। यानी आपने कहा था कि भाई कोई ठीक है मदद चाहिए तो हमें भी बताना, बाद में आपको लगेगा कि भाई क्यों इस ओखली में सिर दे दिया हमने। और जब धनाधन मूसल पड़ते हैं तब ये बात ध्यान में थी, क्यों दिया था हमने ये सिर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो और हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में?
1: बिल्कुल, श्रोता भी हमारे बहुत कुछ कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना मतलब आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत को न्योता देना जो खुद के साथ साथ घर परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ओखली परिवार और समाज में खलबली मचा सकती है। सच बात है,
0: सही बात है। और एक अन्य संदेश में श्रोता ने कहा है कि ये लोकप्रिय हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम मोल लेना। और ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, इसका अर्थ है कि जब एक बार कठिन काम करने का निश्चय कर ही लिया है तो आने वाली जो भी बाधाएं हैं समस्याएं हैं उनसे डरना नहीं है। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के साथ में।

0: तो भाई मन का बावरा पंछी डोल रहा है और हमारे जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं। और ओखली क्या है इसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि ओखली वो भारी बर्तन है जिसमें अनाज को डालकर मूसल से कूटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सर रख दे तो चोट लगना तो तय है। इसीलिए कहावत का सीधा सीधा संदेश यही है कि कठिन परिस्थितियां जोखिम को चुना है तो मुश्किलों से डरना नहीं है और घबराना तो व्यर्थ है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो श्रोता है वो भी कुछ कहना चाहते हैं और लिखते हैं कि हिंदी मुहावरा यानी कि ओखली में सिर देना का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत या जोखिम को मोल लेना। और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि आगे चलकर भारी परेशानी नुकसान या संकट आने वाला है स्वयं अपनी मर्जी से किसी कठिन काम को हाथ में लेता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
0: और भी संदेश हैं इसके लिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ओखली में सिर देना ये वाक्य जीवन के साहस और दृढ़ता को भी दिखाता है। यदि अपनी स्वेच्छा से कोई चुनौतीपूर्ण रास्ता चुन लिया जाए, जैसे कोई भी कठिन परीक्षा है, नया व्यवसाय है, तो अब उसके संघर्षों से डरने का कोई फायदा नहीं बल्कि डट कर उनका सामना करना है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ओखली में सिर देना तो मूसल से क्या डरना बड़ा रोचक है। अगर गाना चला दें तो विविध भारती को ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मतलब डर। इनका कहना है कि नए गाने आए चाहे पुराने गाने आपको सुनना है ऐसा भी नहीं है।
0: एक हमारे श्रोता है जिन्होंने अपना संदेश साझा किया है, ये बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर का काम घर की जो महिलाएं हैं चाहे वो पत्नियां हैं बहनें उनको करना पड़ता है। हमारे पापा का पोस्टमार्टम तो भीलवाड़ा में करवाया गया और इन्होंने अपनी कुछ घटना लिखी है कि पुलिस वालों के साथ में कुछ इस तरह की बातचीत इनकी हुई तो फिर मुनीम को के जरिए वो काम करवाया गया, तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि इस तरह का कार्य जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता यानी कि मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आज मैं दांतों के डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कुछ ने जब चेक किया तो उसने कहा कि कुछ जो दांत हैं वो खराब हो गए हैं तो इन्हें नया लगवा लीजिए उसको निकलवा के। तो मैंने कहा लगा दीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया पर मैंने यही सोच लिया कि अब ओखली में सिर दिया है तो डरना कैसा, यानी कि अब दांत निकलेगा तो दर्द तो होना ही होना है, उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा।
0: यानी कि सिर्फ दिखाने गए थे और दांत का ट्रीटमेंट चालू हो गया। चलिए अब हम भी एक गाना सुन लेते हैं।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं
1: बिल्कुल
0: और बातों के साथ
1: और संदेशों के साथ में और ओखली ही हमारी चल रही है। तो हमारे अभी जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब कभी सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी से नोकझोंक होती है तो धर्मपत्नी बहुत ही फेमस डायलॉग बोलती है, मैं तो फंस गई आपसे शादी करके। तो मैं जवाब देता हूँ कि अब ओखली में से दे ही दिया है तो मूसल से पछतावा कैसा, फिर हम दोनों हंस देते हैं और अगर उस समय बच्चे बैठे हों तो वो भी हंसते हैं।
0: और इसी तरह से भाई जब त्योहारों का मौसम आता है, त्योहारों का जब बहुत सारे त्योहार लगातार आते जाते हैं तो ये भी ऐसा ही समय है। और जब तैयारियां करनी है तो भाई फिर से डरना क्यों है, और इन तैयारियों को बहुत मजे के साथ में उत्साह के साथ आपको करना है। और त्योहार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है भाई आरती? मिठाई
1: आती है, तरह तरह के पकवान,
0: रिश्तेदार? नहीं, सबसे पहले शुरू होता है भाई चलो सफाई शुरू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक नहीं जाना है कहीं कुछ सामान लेने भी।
0: और पता है घर में एक ही आवाज गूंजती है कि इस बार त्योहारों में पूरा घर चमकाना है, और भाई जो बाकी के सदस्य है ना वो सोचते हैं क्या हुआ, हमारा क्या कसूर था, हम भी फंस गए इसमें। लेकिन भाई सबको मिलजुल कर काम करना है, अगर उत्सव का आनंद एक साथ लेना है तो तैयारी भी सबको मिलकर ही करनी है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार तो होता ही है कि साल भर जो सामान अलमारियों में पड़े रहते हैं उनकी हमें याद आती है, उनकी जांच पड़ताल शुरू होती है कि भाई कौन सा डिब्बा है, चलो भाई ये काम की चीज नहीं तो इसे निकाल दिया जाए या काम का है तो रख लें, कहीं से जब हम फेंकने लगते हैं तो पीछे से किसी की आवाज, भाई नहीं रख दो काम की चीज है।
1: बिल्कुल, और वो सामान जो है वो अगले 10 साल तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वो चाहे डिब्बा हो चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, होता हो चाहे बेकारी हो, लेकिन तब भी इसको इतना रहता है ना कि हम लोग की जो भारत फैमिलीज होती हैं उनकी खासियत यही है कि भाई कोई भी चीज़ हम उसको खराब नहीं करते। कोई डिब्बा है तो उसको खाली, चलो उसको धो के रख देते हैं, उसमें कोई मसाला भर देंगे, चाहे चॉकलेट का डिब्बा हो पर कोई खोले उसको चॉकलेट समझ के तो उसमें से दाल निकलेगी, चावल निकलेंगे।
0: के साथ में हमारा जुड़ाव ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये हमें उस बात, कोई ऐसा जब हुआ था तो हमें वो तोहफे के तौर पे मिला था, वो तोहफा चाहे आज हमारे घर में काम नहीं आ रहा है या अभी वो पड़े पड़े धूल मिट्टी से या

0: लग के खराब हो गया, लेकिन उस चीज से जो जुड़ाव
1: बिल्कुल,
0: है उसकी वजह से भी हम
1: उस
0: उसको
1: चीज
0: फेंक
1: से क्या,
0: देना
1: उसकी
0: चाहते हैं।
1: यादों से जो हमारा जुड़ाव रहता है ना वो बना रहता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब हम कोई सफाई करते करते में कोई पुराना फोटो मिल जाए, बस
0: एल्बम मिल
1: फिर
0: गया तो
1: क्या
0: वाली
1: हो गया
0: बिल्कुल
1: काम,
0: टाइम
1: फिर तो
0: गया।
1: सफाई बंद, यादें शुरू। अरे ये फोटो देखो वो, अरे वाह तब मैं कितना पतला था या कितनी पतली थी। और 2 घंटे बाद पता चलता है कि घर की सफाई जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं है। अब बात करें त्योहारों पर जो खरीदारी होती है उसकी, तो त्योहार से पहले बाजार में ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने एक साथ घोषणा कर दी हो कि जो चाहिए वो अभी ले लो,
0: सही
1: नहीं तो
0: है।
1: बाद में कुछ नहीं मिलने वाला।
0: और इतने सारे ऑफर भी उन पे डाल दिए जाते हैं, और घर से जब हम निकलते हैं ना खरीदारी के लिए, तो एक बजट तय करके निकलते हैं कि भाई ये चीज लेनी है या फला फला चीज लेनी है। लेकिन जब बाजार पहुंचते हैं तो बस वो जो कहते हैं ना कि लुभावने अवसर जो होते हैं, जो ऑफर होते हैं, उनको देखकर भाई ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चलो कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं, फट की चीजें भी ले लो, तो कुछ मिठाई भी ले लो, मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट भी ले लो, और आखिर में दुकानदार पूछता है भाई कुछ और लेने का भी मन है, तो कई बार क्या करता है मन,
1: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दीजिए।
0: थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दो ताकि बहुत सारी चीजें और खरीद ले।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी अच्छी चीज सजी, जो दुकानें होती हैं, जो सामान होता है, सजावट भरा वहां पे रहता है ना, वो लाइटें चमक रही होती है, तो मन ही नहीं करता वहां से हटें। अच्छा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे वो काम आए चाहे वो एक तरफ पड़ा रहे घर में, लेकिन उसे उठा लाते हैं।
0: हम खरीदने गए थे एक सजावट के लिए, कोई एक कहते हैं कि लाइट लगानी है हमें, तो एक लेनी होती है साथ में दो और लेते हैं, ये वाला झूमर भी ले लें, ये वाली कंदील भी ले लें, ये वाली लड़ भी ले लें। इस तरह से वो सामान बढ़ता चला जाता है और बजट पर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े लेते हैं ना कि अच्छा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो वो करते करते बजट तो एकदम एक साइड हो जाता है और बहुत ही ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो सजावट का उत्साह तो ऐसा होता है कि घर में एक सदस्य कहता है कि इस बार कुछ यूनिक करते हैं, फिर उसके डिजाइन देखे जाते हैं, है ना।
0: बस वो इंटरनेट पर देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि नए नए डिजाइन कैसे हैं, और जो हमने वहां सजावट देखी बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं लगना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा लगता है। और कहीं कोई लाइटें लगाने में व्यस्त है, कहीं कोई फूल चिपका रहा है, कोई किसी अपने सिर्फ कहते ना दिखाने के लिए काम करता है, कुशन को उठाया यहाँ से वहां रख दिया,
1: बस
0: ये उठाई चीज वहां से वहां रख दी, जो काम जिसे ना करना वो काम के बहाने भी इस तरह से,
1: बिल्कुल छोटी छोटी चीजें उठा के, अच्छा ये चीज वहां है वहां रख दी, काम कर रहे दिख रहा है क्या, देखो हम काम कर रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि ना वो एक माहौल एक अलग सा बना होता है जो रोज नहीं होता ऐसा।
0: तो चलिए माहौल तो बनेगा, हमारे संदेश भी बहुत सारे आ रहे हैं, पहले गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सच में जो बहारों की जो रुत आ रही है यानी कि त्योहारों की रुत आ रही है, तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि लाइट्स, दिए, रंगोली, फूलों से जब घर सजता है तो सारी थकान गायब हो जाती है, और ये काम पूरे परिवार को एक साथ लेकर आता है जहां सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार आ रहे हों और घर में साफ सफाई ना हो ये असंभव है, और पति देव के पॉकेट की भी सफाई ना हो ये भी असंभव है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की खरीदी वैरायटी से भी भरी बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है, इसके सामने पति देव के चेहरे का कलर भी डिम पड़ जाता है।
0: और अब सबसे पहले जो त्योहार आने वाला है वो है नवरात्रि उत्सव, और इसमें जब गरबा करने के लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब एक साथ में निकलते हैं, तो जो साज सज्जा होती है उसमें कपड़ों के, गहनों की जो खरीदारी है वो देखने लायक है। बाजारों में बहुत धूम मची हुई है।
1: बिल्कुल, इसमें बहुत ही रौनक रहती है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स खरीदना त्योहारों का सबसे मजेदार हिस्सा होता है, लेकिन भारी भीड़, लंबी लाइनें, बजट का ऊपर नीचे होना थोड़ा तनाव भी देता है। फिर वहीं विंडो शॉपिंग और तोल मोल करना, ये सब अपना ही एक अलग मजा होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि ये दीपावली का पर्व जब भी आता है तो हमें साफ सफाई करने में काफी दिक्कत आती है, सफाई भी बहुत काफी और पूरे घर की करनी होती है, एक तरह से काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, पर मैं 2 महीने पहले से सफाई करना शुरू कर देता हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी जब भी समय मिलता है सफाई करते रहता हूँ, फिर भी सफाई पूरी नहीं हो पाती।
0: और एक अन्य संदेश में कहा गया है कि त्योहार आने से हफ्तों पहले घर का कोना कोना चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि घर की सफाई नहीं हुई तो त्योहार आएगा ही नहीं। पुराना कबाड़ निकालना, अलमारियों को ठीक करना, ये शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है, लेकिन घर को साफ सुथरा देखकर मानसिक सुकून मिलता है जो लाजवाब है। सच तो ये है कि बिना सफाई, सजावट और खरीदारी के कोई भी त्योहार फीका लगता है, और बिना अपनों के साथ हल्की फुल्की बातचीत के ये सब तामझाम भी बेकार है। इसीलिए असली मजा इन दोनों का संतुलन बनाने में है। तो ये बात बड़ी सही कही है, जहां एक तरफ ये सब काम है, खरीदारी है और बजट भी है, लेकिन अपनों के साथ बैठना ये एक अलग सुकून देने वाले पल होते हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी यानी कि सजावट और सफाई बड़ा बेमिसाल मुद्दा है। त्योहार पर हमारी माँ पहले कई साड़ियाँ, खाने का सामान और पटाखे खरीद कर लाती थी, लेकिन अब माँ कुछ नहीं लाती हैं। अब घर पर पापड़ और गुंछा बना देती हैं। पापा भी पटाखे खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं देता, लेकिन अब कोई नहीं देता है। बहन सुबह झाड़ू से सारे कमरों की सफाई करती हैं और जाले भी साफ करती हैं, फिर माँ सब्जी बना देती हैं और उसके बाद बहन रोटियाँ देती हैं। सफाई तो नजाकत से बयान करती ही हैं। मतलब चीजें हैं कि देखिए, साफ सफाई घर में होनी चाहिए, बहुत सारी जो, ताकि जो कहते हैं ना कि जो इतना समय का गंद रखा हुआ है, जो कूड़ा करकट है वो हट जाता है, कचरा हट जाता है, तो साफ सफाई हो जाती
0: और
1: है।
0: और इसका पूरा सीधे कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका भी यही है, क्योंकि सीलन की बदबू हो चुकी होती है घरों में, और सीलन से कई बार खराब हो चुकी होती है बारिश के बाद में। फिर जब ये त्योहार आता है तो घर में कई बार जो कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जाले लग जाते हैं मकड़ियों के, उसकी साफ सफाई हो जाती है, और पूरा घर कई बार जब हम लिपाई पुताई भी करवाते हैं तो जो कोनों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और पुरानी चीजें जो घर में कई बार इस्तेमाल ना होते हुए किसी कोने में पड़ी हुई थी उनको भी निकाल कर घर में जगह बना दी जाती है। और आरती त्योहारों का असली मजा तो यही है कि परिवार के साथ बैठें, पुराने गिले शिकवे भी भूलें, पड़ोसियों के घर भी कई बार हम मिठाइयां पहुंचाते हैं उनसे ताकि संबंध अच्छे बने रहें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और सबके साथ मिलकर ये खुशियां बांटना ये बात ही अलग होती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि त्योहार बनाम खरीदारी, सजावट, सफाई, दीपावली की सफाई शुरू हो चुकी है, मेरे रूम के सभी कपबोर्ड, जो जितने भी कबर्ड हैं, अलमारी हैं, सभी कंपार्टमेंट की सफाई मैंने खुद की है, क्योंकि अगर कोई दूसरा करे तो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं, और श्रीमती जी को इससे

0: बाहर रखना पड़ता है और इस बात पर नोकझोंक होती है। मेरी चीजों में मैं मेरी जो चीजें हैं वो मैं ही रखता हूँ, तब मुझे आसानी रहती है। इन दिनों घर का माहौल गर्मा गर्मी का रहता है, मतलब त्योहार में ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा होता है ना कि जब त्योहार में सफाई होती है ना तो मेरे सामान कहाँ चले गए, वो मिल नहीं रहे। जब सफाई के बाद ये जो नोकझोंक होती है ना बहुत खतरनाक होती है कि कभी किसी का सामान नहीं मिल रहा, कभी किसी का किसने कहाँ रख दिया। तो एक अच्छी बात भी है कि हम अपने घर
1: लपोन पूर्ण ऋतु मुंबई पेन के पचिता विविध भारतीय जय में आरजी ग्लोंगटांगलो लाके आकाशवाणी दीपू ननारणी कांगसम स्टूडियो घरी परफाई के थमरा मिनिट प्लिक एब्राफ चौक जी रंग रंगलो लसी गुवाहाटी पेन के पचिता कार्बिया जय में आरजुग सिन्हा।

वर्षा के मी चुएंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेन की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन

ला पोन पोन ले तुम आरु इतिन के पचेता किसान वानिया जय में आरजुक लंग तांगलो पिनी के पचेता पोन लके इंकुंग इंकोय रसिर के अंग देंगे लो तपन ला बांसो अंग देंगे निलित माकास वानी दीपू पेंसिता में केरोट के पचेता पोन एक चेंग लांग नांगले तुम जय में कार्जु लंग बॉम लके आकाशवानी दीपू पेन जाय मे के पचे तक पन बम लाके एफ एम बैनर लॉन्ग पेन मेगा हार्ट्स फारो सीरा तक बोर रचर के बापन अन पार्ट ला बांसो जाय मेक नागली तुम रेस एप ला पेन न्यूज ऑन एयर एप लॉन्ग पेन ता आर्जी लॉन्ग इचे

0: प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
1: आरंभ करो इन्वेस्टिंग और पातू।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार।

0: और विस्तार से मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और

0: नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मधुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।

0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hausen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by